0: ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମାଜ ବି ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳ 6 ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को

0: समझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ଭା ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ସକାଳର ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

0: শেষ হলা আদিবাস সংগীতর কার্যক্রম রিঞ্চুড়ি আকাশবাণী জয়পুর সময় সকাল ছটা হচ্ছে 55 মিনিট হওয়া যাচ্ছে সংস্কৃত সম্ভাষ শুণত রিলে করে প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লির।
1: ইয়াম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক দিব্যানন্দ ঝা। अथ वार्ताः। प्रशासनेन सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एकसदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षा क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थं उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मूवर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़

0: वही कलेक्टर हो जावे रे, वही कलेक्टर हो जावे रे।
1: विविधारे आजि सुनिले ओएस परीक्षारे कृतकार्य हेथिबा सुमन गुप्ता, नवीन प्रसाद गुप्ता, स्वाधीन हिकका एवं केशव माछिंक सहित अंतरंग कथाबार्ता तांक सहित कथाबार्ता करथिले सस्मिता पाणिग्राही।
2: आशा अमर आजिर अतिथि मानंकर कृतित्व आगामी दिनर अनेक नुआ स्वप्नकु डेणा देबो। तेबे आजि त समय हेलाणी आजिर विविध कार्यक्रम को एठि रखुचु। आपण मानंकु आजिर कार्यक्रम केमिति लागिला आपण माने 9438268568 एही नंबर रे आपण आपणकर मतामत एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिए आम पाखकु पठाई परिबे। आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे आजिर विविध कार्यक्रम रु विदाय नउचु। आमे दुहे
1: मोरंजन
2: मु सस्मिता। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल

0: मद्रास आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस देन द मार्केट।
1: मेरा नाम ब्रह्मदेव मालाका, मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा जिला से। लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे, की सलाह पर हम लोग चलते हैं, बराबर दवा लेते हैं। यही दवा यदि बाहर में लेना चाहते हैं तो महंगी दवा मिले। तो सरकार की एक संस्था है, इससे गरीब की समस्या हल होती है।
0: द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 हैज ऑल्सो इवॉल्वड इन टू ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। अंडर द स्कीम 40 लाख करोड़ रुपीज ऑफ लोन्स हैव बीन डिसबर्स्ड टू द बेनिफिशियरीज सो फार। एज इनकम्स राइज एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड, इंडिया

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचित प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे 5-200 टंका छाड ओ रेफरल उपरे कैशबैक आजि कॉल करंतु 1800102-9282
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: गीतिकार किशोर चंद्र नंदनक अन्य को रचनारो परस्थ शिल्पीले मधुमिता महांती।

0: ଶେଷ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁର ଲହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचित प्रत्येक दिन 1 टंका
2: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करि प्रथम गैस बिल रे 5200 टंका छाड ओ रेफरल उपरे कैशबैक आज ही कॉल करंतु 1800102982।
1: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस।
3: मध्यस्थता ड्राइव 2.0 मान्यवर सुप्रीम कोर्टरो एक नूतन प्रचेष्टा आपणकर मामला कोर्टरे वर्ष वर्ष धरी चालुछि कि वर्ष वर्ष धरी कोर्टरे न्याय पाई अपेक्षा करुछन्ति कि एबे आसीछि एक सहज द्रुत एवं प्रभावशाली उपाय मध्यस्थता। कौनसी खर्च बिना आपण निजे भाग नै आलोचना माध्यमरे आपणकर विवादर स्थायी समाधान करंतु। दुई पक्ष परस्पर बसिकि सहमतिरे सहजरे मामलार समाधान पाइपारे। आज ही निकटरे थिबा कोर्टर जिला आईन सहायता केन्द्र रे जोगाजोग करंतु। समय बंचांतु, खर्च कमांतु, संपर्क रक्षा करंतु, मध्यस्थता को रक्षा करंतु एवं आगकु नियंतु।
0: आरंभ करुछु सुगम संगीतर कार्यक्रम। प्रथम शिल्पी हेले उदित नारायण।

0: ଶେଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତଧାରା। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ପୁଣିଥରେ ଶୁଣିବେ ଆଜି ରାତି 7ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल

0: 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी जयपुर केन्द्र प्रसारित हो मीडियम वेब्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जगे एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज जगे और मोबाइल फोन रो न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे
2: एबे सीएनजी भरी करंतु सीधा संचय
3: गेल गैस सीएनजी स्टेशन रे सीएनजी भरंतु एवं पैसा आपे आपनको फ्यूल वॉलेट रु पैठ होई जीवो ऑटो पई 10000 टंका कार ओ छोटो जान पई 15000 टंका ओ बस तथा बडो जान पई 20000 टंका पर्यंत लाभ उठांतु जहा केवल नुवा सीएनजी गाडी किबा सीएनजी किट लगाइले सीमित समय पई उपलब्ध
2: अधिक जानिबा पई कॉल करंतु 1800102982
1: आरंभ करूछु हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम प्रथमे तुम बिन ये चलचित्र शिल्पी हैं अरिजित सिंह।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक था टाइगर, ये चलचित्र शिल्पी हले सुखविंदर सिंह।

0: ओडिशा सरकारंक उच्च शिक्षा विभाग आनिछि नुवा सुजोग एडीपी अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम पाठपढ़ा सहित काम शिखिबार सुजोग तृतीय वर्षरे मिलिबो स्टाइपेंड आसंतु दक्षता गढ़ीबा चाकरी पाई पथ सुगम करिबा अधिक सूचना पाई साम्स पोर्टल कु जाई आज ही आवेदन करंतु एडीपी आज सिखंतु काली रोजगारक्षम हुंतु।
1: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, କଥାଚିତ୍ର ତୁମ୍ବିଲେ।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
0: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल

0: जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के डर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र

की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए, महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
6: हाँ?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
6: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
6: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के

0: मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली
1: का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, इतनी अच्छी बात बताई इसने।
4: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
4: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।

0: गौरमा, गौरमा,
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
0: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
0: गौरमा,
1: हाँ,
0: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
2: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
1: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
3: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ गौरमा, सब तैयार है,
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
3: नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
6: ये है जंगल के उपकार।

0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा

0: एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
1: नहीं लगाने देंगे। बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों में जाकर चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों में जाकर चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा

0: की गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा,
0: नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोतले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रचार कल कतोटी भक्ति गीत आकाशवाणी जयपुर समय दिन गोटाए शुणु हिंदी समाचार रिले करुचु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। वर्तमान सुनिबा हिंदी सुगम संगीत। प्रथम कंठशिल्पी आश्चर्य। शिल्पी गायछंती अमजात नदीम का गीत रचनारू।

पर तुम में शायद कुछ खास है, तुम्हारी आंखों में बच्चों की सी आस है, तुम्हारी आंखों के शीशे में मेरा चेहरा दिखा है मुझे, मेरे चेहरे की रंगत क्या खूब दिखती है इनमें, सोचते हैं

0: तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
1: जनजाति व्यापार मंत्रालय पक्ष आयोजित सम्मेलनी जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 एक अंश देशव्यापी जनजाति विकास क्षेत्र में कार्य कर प्रतिष्ठानगुड़िकर कार्यशैली सुदृढ़ करने शासन व्यवस्था संस्कार आणवा तथा ए क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल भित्तिक सेवा जोगाइदे आदि प्रसंग उपर यह सम्मेलन आलोचना सम्मेलन में 26 राज्य और 4 केन्द्रशासित अंचल प्रतिनिधि अंशग्रहण कर भारत युक्तराष्ट्र आमेरिकार वार्षिक सौरशक्ति क्षमता अतिक्रम कर 2025 मसीहा विश्वर द्वितीय बृहत्तम सौरशक्ति अभिवृद्धि बजार हो पारिछि। भारत में उल्लेखनीय भाव 155 गीगावाट सौर क्षमता स्थापन करी फल देशर 50% अण जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य पूरण करातीय शक्ति उत्पादन में उल्लेखनीय अंशग्रहण कर पीएम सूर्यघर मागणा बिजुली योजना फल 40 लक्ष ऊर्ध पर जीवनशैली परिवर्तन आसीपारी से छात उपर सोलार यूनिट स्थापन कर मागणा बिजुली व्यवहार कर सौरशक्ति सफलता संपर्क में सूचना दे केन्द्रमंत्री श्री जोशी कहते देशर सौर अभिवृद्धि विश्व स्वतंत्र स्थान सृष्टि कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व क्रमे भारत स्वच्छ शक्ति रूपांतरण त्वरान्वित हो पारिछि एवं शक्ति सुरक्षा सुदृढ़ होइछि फल पुनर्नवीकरण शक्ति सृष्टि दिगरे भारत विश्व नेतृत्व नहीं पारिछि। सुप्रीमकोर्ट आरावली पर्वत श्रेणीर परिभाषा एवं सीमा संबंध में केन्द्र सरकार पक्ष दिया रिपोर्टर समीक्षा करने लगी एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमिटी गठन कर भारतीय जंगल गवेषणा एवं शिक्षा परिषद महानिर्देशक कांचन देवी अध्यक्षतार एक कमिटी गठन कर चलित वर्ष अगस्त 31 तारीख सुधा ए संक्रांत रिपोर्ट दाखल करने लगी कमिटी को निर्देश दी। आरावली पर्वत श्रेणी सुरक्षा संक्रांत निरपेक्ष एवं विज्ञानगत आकलन करने लगी सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्ष प्राय 40,000 छात्री सफलतार पूर्ण मूल्यायन आवेदन करोसी प्रतबंधक बिना से आवेदन प्रक्रिया संपन्न सीबीएसई पक्ष द्वादश श्रेणी छात्री उत्तर पुस्तिकार स्कान कपी प्रदान एवं पुनः मूल्यायन ऑनलाइन पोर्टाल खोला सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर सीबीएसई पक्ष एसबीआई कानाडा बैंक बैंक अफ बरोदा एवं इंडियन बैंक मध्यम पेमेंट व्यवस्था करा जाई सेहीपरि यूपीआई नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड माध्यम ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था करिपारिया बोली सीबीएसई पक्षरु सूचना दिया जाई। आपण माने संवाद सुनछंती आकाशवाणीरो। कर्णाटक कांग्रेस विधायक दल नेता डीके शिव कुमार आज बेंगालुरु अपराह्नरे 25तम मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल थावरचंद गेहलट पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइबे। पूर्वतन गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करेंगे। पाखापाखि 10 जन विधायक आज मंत्री रूपे शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल रणदीप सिंह सुरजेवाला एवं अन्यान्य विशिष्ट व्यक्तिविशेष जोगदेवार कार्यसूची रही। दिल्लीर मालवीय नगरस्थित एक होटल रे आज सकाळे अग्निकाण्ड घटि 21 जन मृत्यु घटी। दिल्ली अग्निशम सेवा पक्षर् मिलिथिबा सूचना अनुजाई 15 अग्नि निर्वापक दल घटनास्थल को जाई नियांकु नियंत्रण करथिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक घटनारे गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री मोदी प्रभावित लोकमानकु समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबा लागि निर्देश देछन्ति। अग्निकाण्डरे प्राण हरैतिबा प्रत्येक मृतकंक परिवारकु प्रधानमंत्रीक जातीय रिलीफ पांठिरु 2 लक्ष टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करा जायछि। सेहिपरि आहतमानंकु 50,000 टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करा जायछि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अग्निकाण्ड घटनारे दुख प्रकाश करिछन्ति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मध्ये ए घटनारे दुख प्रकाश करिबा सह राज्य सरकार परिस्थिति प्रति तीक्ष्ण नजर रखिथिबा कहिछन्ति। दुर्घटनारे आहत लोकमानंकु समस्त प्रकार चिकित्सा सहायता जोगाई देबा लागि से निर्देश दैछन्ति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी शिक्षाविद तथा लेखक बीबीएस आयरन श्राद्धवार्षिकी अवसर में तांक प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर से कहिछन्ति आयर जने निर्भीक देशप्रेमी एवं भारत स्वाधीनता संग्राम दिगरे से सारा जीवन उत्सर्ग करिथिले। लेखा एवं अनुवाद जरिया तमिल

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, कनु रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
0: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात ही हरे भरे की तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देखकर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: महक है वो आज भी है। खुशबू है ना, आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
0: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
0: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
0: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो है अपने विचार लिखे कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
0: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस।
1: अरे
0: तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
0: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
0: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
0: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ,
0: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: लौकी है,
0: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना। तो महिलाओं के साथ बड़ी सारी सब्जियां बनाए क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
0: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जिसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों
1: की। सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
0: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल। मतलबी रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतः बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी।
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं।
1: हाँ।
0: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और

0: वैवाहिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वे कहते हैं भाई हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भी आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्ते में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता, ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे यशोदा ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपनी जो आपकी धर्मपत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहें।
0: बिल्कुल
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था तब सिखाया नहीं गया और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी

0: सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: को दें।
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दे, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है, ये भरोसा सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है, समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं, संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: भरी जब आंखें होती है ना तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खासतौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर इसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: में रख लेते हैं वो भी।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और

0: आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं और हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
0: होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकती हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन लिया?
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है

0: और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही
1: देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़नी चाहिए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्याश्वेता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके दो साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है। और इस तरह उन्होंने दो साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता दो मिनट भी नहीं लगाते। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो दो मिनट में आ जाता है। एक शोधा लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी। उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा संभाल रहा है, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकती हूँ जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना। वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चलो अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए साइकिल दे दी जाती है।
1: लेकिन पहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और

0: भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल ममता मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी किस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बापा के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था और सुनने के बाद एक मन में अलग सा नशा आ गया है। और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खासतौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई हुई है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की

0: छिलके वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें। इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: छात्रजन जल रहे न रहे हम यूं ही महकते रहेंगी और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करते हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं, मतलब आप

0: अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहां पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद इम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
1: जी,
0: ये हो गया पहला सवाल।
1: हाँ, राइट। फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एजुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहां पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहां पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहां पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो होगा जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलिया वर्जन।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट अ चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन

0: ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है। ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो पीएचडी कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद पीएचडी कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो पीएचडी हो भी चुकी है, उन्होंने खुद का अपना स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मेनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पैक्ट हैं जो बीएसएलपी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टेन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल, तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है, बट व्हेन यू से

0: टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स

का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज,

0: एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजिए, ईएनटी के पास भेजिए और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं. पर जहां पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे. इट कैन भी उनको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहां पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसको पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस, आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स, ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहां कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं वो दो ग्रुप में होते हैं.

बेसिकली एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है। हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास है उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, तो इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थल के पास जाती हूँ, ऑप्थल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेम देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहां से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहां पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहां पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा। ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, एक टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चाहिए अलग अलग चीजें खोलते हैं। ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है। ओके, बुक इस तरीके से खुलती है। ओके, अगर मैं कहूं कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड। ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ जब हम रीड

0: करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह में श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है. तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इश्यूज, नो अंडरलाइंग इश्यूज एज सच. बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी, ना यार, ये जी सुनते हैं ये गाना.

0: किस तरह से प्रभावित करती है जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है? अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते हैं और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स वॉट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्टुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
2: बिल्कुल। डॉक्टर रैत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, ये कहाँ

0: जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है, अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड है, डिपार्टमेंट की हेड है तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है.
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहां पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, मैंने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफी अलग है, बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूं कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना, आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है,

0: डटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है, फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहां पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहां पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्वार.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विथ मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती।

0: whole team. They are very cooperative and the way they are dealing with everything. So thanks to them. Thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वजंग संस्था को. थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के

0: हेर्ले यन्तर खारा के आज काई गीत सुनबास के इच्छाको लाचास मनको लाचास
1: पानी मारे दराज नै
0: हाले बाबु
2: हाले तमोर गीत सुनाइ देबु नीलाञ्चल बाबु
1: बन्दवना कार्यक्रम सुनछन्ति अल आरजे अडिटरको प्रस्तावकी डेडिकेट
2: तांगर त फोन कटि गला हे तांगर गीत सुनाइ देउ हेले नि
0: हाले हाले हेलो सरदा लगभग गीत
3: हेलो मामा नमस्कार
0: जोहर जोहर के कैलाश नि बाबू कन्तेन कैलाश नि
3: म जयपुर दाहु भाइ नि कइनी बाबू
0: ना लुप कोई देश काय
3: ना हम प्रकाश भाइ
0: हां दे प्रकाश बाबू बोला तस तमोर संग जबर दिन के कत्ता आइलु नि काई गी
3: हाय बाबू नया लोग लवानी तो
0: हां हां एबे हमर रेडियो सुनलास नि तो
3: हां सुनलु नि
0: हमर कार्यक्रम मन किंति लागला नि
3: बढ़िया लागला नि
0: हां तमे सेंति सुनती रुआ आरी आरी बाबु कुआ आज काई गीत बचला चास काई गीत सुनसा
3: आज तो हमर सी शांति ला फसला गाइला त नै जे लिखि त पानी धरन हो
0: हां हां हां
3: सी गीत सुन सुनाय जा मामा
0: आले आले से गीत सुना तमे मिसा शारदा हुआ आमे मिसा शारदा बाबू
3: आतामन बोलो तो की आतामन आतामन के जुआ जुआ
2: आले जुआ लगो
3: जुआ लगो त
2: अर बोला चास काई
3: हां बोला काटा
2: एंती से काई कार्यक्रम सुनते रह अरे हमके फोन करते रह काई आले तमर सरदार लगवा गीत सुनाई देलु नि है सुना जोर लगो तबे
3: जोर जोर
2: हेलो सरदार लगवा गीत
4: हां भांजी जोर जोर
2: जोर जोर मामा के कैलाश नि
4: ए रविंद्रनाथ जी कहू जे मोहला कोटा एलन ब्लॉक बरगड़ जिल्ला नु
2: आले बोल का तमर संकाता की बर्थडे सरदार लगला बाबू
4: आओ भांजी दुका पेन कंता हैला
2: ए अमर बाटे तो सते नहीं मात्र पानी पवन कंडे ऊपर लियाला नि बाबू
4: हां अमर आले तो कितने गिरे दुका पवन हैला
2: हे केता हैला ले
4: दुका पवन हैला ई जन कालो बैसाखी बरसा भी हैला
0: हेले रविंद्रनाथ बाबू आमु मामन जोडला नि कि नाही गछे नि
4: आ मामा जोहार जोहार
0: जोहार जोहार आम गछे तानु आम म नदरला नि कि नाही बोले नि
4: हां हां आम आम माने झरू जे मामा
0: खाइलास नि तो
4: हां
0: से शारदा के काई गीत सुनबा गीचा को लाचास मन को लाचास कोई दिया
4: आज ही मामा से लिचकी नीचा गीत का सुनाई देवे
2: काई बोले पसंद करबा गीत सुनाई देलु नि सुना अरे एंती से हम के फोन करते रुआ है
4: हां मामा जी जोहार भांजी जोहार
2: जोहार जोहार

0: हेलो सरदा लगवा गीत
1: ज्वार आ गया
0: जोर जोर बाबू के कैलासनी कौन तीन कैलासनी
1: मुई चित्र सन सबर कोइले नि आ गया कोलाहांडी जिला भवानी पटना जगन्नाथपुर रु
0: आले बाबू
1: आ गया
0: हमें तो बड़े निको आछु ए दे
1: धन्यवाद आ गया
0: हमरा आत्ता मिसा बसला छ खताई दियास
1: मौसी ज्वार
2: ज्वार ज्वार केनता आछस
1: मुई तो बड़े निको छ मौसी
2: आरे जबर दिन के तुमर संग कता लेनी काय सिटा का जे मके मिसा जबर सरदा लागला नि
1: धन्यवाद मौसी
2: काय गे सुनवा सले
1: आसारे मोली फूल विवाह घरे ज्वेता आसारे कोदम फूल विवाह घरे ज्वेता।

0: हेलो शारदा लगवा गीत।
1: हेलो मामा जोहार लागो।
0: जोहार जोहार मांझी निको अच्छस की।
1: हाँ मुई मुने को अच्छे मामा भलो अच्छे बरगढ़ सन प्रभा कर कहली नी।
0: हाँ हाँ तुम के अर नो चिन्नुता चिन्नली क्या है अल्ले मुई के चिन्न देखा
1: मामा
0: चिन्नलास की मामा का चिन्नलास की नहीं मुई कौन मामा
1: नहीं नहीं नहीं चिन्नली मामा ना था ठीक है कोई दोन
0: ए तो मुई न कोई मोटे तानु कहले सीटा डोल न लगे
2: आले स्वर्ण प्रभा बहनी केनती अच्छास
1: दीदी जोहार लागू।
2: जोहार जोहार
1: मुई भल अच्छे दीदी निमा अच्छे आ आपन माने जे केनता छ
2: आमी सा निमा नाचू ए मेटा पिला बसला अच्छे हमर संगे हे ये ले ताके न चिनलास नी बोली कोइला नी से आरी
1: ओ नाइ चिनी ना ओ के नाइ चिन लागला दीदी का ना ना का ना बोले
2: मेटा मेटा मामा
1: ओ मेका मामा
2: आले सोनू प्रभा दीदी काय गीत सुनवा साजी
1: आज तो श्रद्धा लावा गीत दीदी श्रद्धा लावा गीत गुटे सुनवा आउ अजे गीत टाला मते मके नहीं जा बाबू रे तोर गा के तोर कनिया करी
2: तोर
1: बंसी देला न मते महनी करी से गीत तो आपन मान दीदी
2: नहीं जा रे बाबू तुई मके तोर गा के तोर कनिया करी आले तुम के गीत सुनाय देबु सुना अरे एंती से हमके फोन करते रुआ है
1: हाँ दीदी धन्यवाद दीदी जोहार मामा
0: जोहार जोहार जोहार।

0: हेलो सरदा लगवागीत
1: अय्या नमस्कार।
0: जुआर जुआर के बाबू कायटा नाव होले
1: आमो
0: ओलप संगले
1: नारायण कुमार साहू आर पटना थगड़ कटक रु कहो
0: कटक नु कोइलासनी।
1: हां आज्ञा।
0: बड़े सरदा लागला कार्यक्रम सुनलासनी तमे सिति ठानु।
1: हां
0: बुझी पारलासनी
1: आदिवासी गीत कोरापुटी आदिवासी गीत बहुत भल लागे।
0: जा हो आम के बड़े सरदा लागा ई कथा सुनी करी तमे कटक थानु सा सुनलासनी कार्यक्रम आरे आम के अंति फोन करलासनी। आले काय गीत सुनवास
1: गीत सुनाई देवा सुनाली सुनाली हाल मोर सुनाली।
0: आले आले तमे तमर मन पसंद गीत सुना रे एंती से हम के फोन करते रुवा है।
1: आज्ञा।
0: आले जुआर लागो।
1: हां जी। हां
2: हेलो सरदा लगवा गीत
3: बसंतर आगमन बने मीठा मीठा मलाया पवन बसंतर आगमन बने मीठा मीठा मलाया पवन तुम आगमन बने तुम आगमन बने मीठा मीठा हृदय भक्ति गीत हृदय भक्ति गीत। नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग
2: जोर जोर निको चस की बाबू।
3: आज्ञा मु बहुत भल अछि।
0: बढ़िया निको गीत कर लेकि दला सामर सरदा लगवा गीत का जे जबर बोल लागला हम के एंती से काय कार्यक्रम सुनते रे आले आज काय गीत सुनवा मन आछे पुष्टि बाबू
3: बताउ बाबू ओने आपन गो पसंद रे भल रोमांटिक गीत सुने दे।
0: आले तमर का जे गोटे सरदा लगला परा गीत गोटे तुम के पसंद लगला परा गीत सुनाई दबो आले आले आले
2: बाबू आले आले आले
0: एंती से फोन करते रुआ है रोइलु नी जुआर लागो
2: जुआर लागो
3: आया जुआर लागो।

0: ଦେଶୀୟ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୈତିଚାନ୍ କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଶାରଦା ଲାଘବ ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜୁ ପ୍ରଧାନୀ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ
1: ନମସ୍କାର। ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000-50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है।

0: में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती। श्रोता बंधु वर्तमान जानिबा आम चलित अधिवेशन रे प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। हिंदी चलचित्र गीत प्रचार करिबो संध्या 6:10 रे। संध्या 6:20 रे सुनिबे अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत। उज्ज्वला आम देश सुनिबे संध्या 6:30 रे। आजिर प्रसंग संध्या 6:55 रे। जिला हलचल राति 7:25 रे सुनिबे कलाहांडी जिला संपर्क रे। रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु ओडिया चलचित्ररु केतोटि गीत सुनिबे राति 7:00। चाषी भाई आपणार कार्यक्रम कृषि और कृषक प्रचार करिबु राति 7:30 एथिरे रहिछि चाषी भाई को दीपद कथार खरीफ चाष पई प्रस्तुति संपर्क में साक्षात्कार शुणिबे निरंजन गौड़ सहित पर रही आज चाषी साक्षात्कार प्रहलाद घ्यूरी सहित पुराणा हिंदी चलचित्र गीत को नहीं कार्यक्रम चीर सबुज भेटदेबु राति 8:00। राति 8:15 शुणिबे केतोटि सुगम संगीत आमर विशेष सुगम संगीतर कार्यक्रम मूर्छनारे शिल्पी माने हिले बीरेन नायक प्रीति पंडा गीत रचना गौर पट्टनायक स्वर संयोजन एवं संगीत परिचालना विजय कुमार सामंतराय। राति 8:30 राग संगीतर कार्यक्रम खयाल शुणिबे परिवेषण करिबे सिंह बंधु। राति 9:30 शुणिबे केतोटि गीत एवं गजल शिल्पी माने हेले तलत अजीज अशोक खोसला मिताली सिंह रूप कुमार राठौर सोनारी राठौर राम शंकर एवं चंदन दास। राति 10:00 शुणिबे भारत सरकारंकर 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे एक विशेष कार्यक्रम रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 10:30 हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम एकक चलचित्र क्रम शुणिबे तेरे नाम चलचित्र केतोटि गीत। बंधु एथिला आम चलित अधिवेशन प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क में सूचना। वर्तमान जानिबा आसंता कालीर अधिवेशन प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क में किछि सूचना। वंदना शुणिबे सकाळ 6:05 शिल्पी माने हेले वैभवी सेठे वेणुधर सुबुद्धि दीप्तिमय महांति गुरुप्रसाद दास कल्पना पटनायक एवं रामहरि दास। रामचरित मानस शुणिबे सकाळ 6:25 सकाळ 6:45 आदिवासी संगीतर कार्यक्रम रिंजोड़ी एथिरे रहिछि गदवा संप्रदायर गीत परिवेषण करिबे बड़ बिरसा सिसा एवं साथी। सकाळ 7:25 शुणिबे गवाक्ष कार्यक्रम विषय रही लोभ सुरलहरी कार्यक्रम शुणिबे सकाळ 8:30 शिल्पी माने हेले लिविंगस्टोन खोसला एवं चर्चिका राय। डायल आकाशवाणी प्रचार करिबो सकाळ 9:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शुणिबे दिन 10:30 दिन 11:00 शुणिबे संगीतर विचित्रा कार्यक्रम शिल्पी माने हेले सुरेश चंद्र मिश्र प्रणति मिश्र जदुमणि सुतार राजलक्ष्मी साहू एवं भिकारी चरण बड़ संगीत रूपक आम घर आम परिवार प्रचार करिबो दिन 11:30 रचना एवं प्रयोजना करिबे पद्मलोचन दास। दिन 12:30 शुणिबे सौरा भाषार कार्यक्रम तारभा एथिरे शुणिबे साक्षात्कार सौंदर्य उपचार रे हळदी। युववाणी प्रचार करिबो अपराह 5:30 एथिरे रहिछि मेसेज माध्यमरे अनुरोधरे ओडिया एवं हिंदी चलचित्रर गीत। संध्या 6:10 शुणिबे हिंदी चलचित्रर केतोटि गीत श्रीमद् भागवत प्रचार करिबो।

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी।
1: अरे रीमा, सोलार पैनल लगे दे, सोलार पैनल लगे दे। केबे ठु मोर सब सांग माने कहुतिले, किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले।
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मु प्रधानमंत्री कहिबा पर

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ଖୟାଲ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସିଂ ବନ୍ଧୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9:00 ଶୁଣିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 8-9, ତାପରେ ଶୁଣିବେ ସ୍ପଟ୍ଲାଇଟ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ।

0: दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु

0: वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40

0: लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while

0: schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke ab mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead, aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha bhai, ye to mera haq hai wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya, which I am sure the listeners of Akashvani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहाँ खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहाँ खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिला के ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव. देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं.
1: बिल्कुल.
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट. टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल. सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द

0: इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we've seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंचने, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती है, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में, केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियाद

0: ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर

0: फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
1: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई

0: मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶୁଣିଲେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଏକକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତେରେ ନାମ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଶୁଣିବା କେତୋଟି ଗୀତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗୀତକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଉଦିତ ନାରାୟଣ। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ହିମେଶ ରେଶମିଆ।

0: ଏକକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ତେରେ ନାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କେତୋଟି ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମାଚାର। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସରଫିରୋଜି। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।